0: एक्ट के माध्यम से छोड़े गए उपग्रहों में भारत के 3 और अमेरिका के 96 उपग्रह शामिल हैं। वहीं इसराइल, कजाकिस्तान
1: और चीन
2: يا عبد الرحمن السويحي.